साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: 1957 की फिल्म द पेइंग गेस्ट, किशोर कुमार आशा भोसले, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9:25 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर, इट इज द सॉन्ग जो आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा।

0: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's Best Dancer Season 5. Coming soon on Sony TV.
1: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
2: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: Can I use my phone a friend, a cool Raj?
2: जी बिल्कुल।
3: Hi Raj, listen, is it bronze bank, silver bank, gold bank or platinum bank?
4: It's definitely gold bank.
3: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold bank.
2: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
1: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ऑल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।